थी बदहवासी थी बिगड़ी हुई बात थी। आ गया जुल्मते शब में माहे तमाम उस पे लाखों

ये दिल में अरमा है अपने तैयब मजार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालुहू।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर वक्त ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर, विरदे सुबह है मेरे ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु।

बातिन में मेरे या रब बस जाए याद तेरी, हर दम रहे हुजूरी, दिल हो मकाम तेरा, मुनिस हो मेरी जान की, फिक्रे मदाम तेरी, हमदम हो मेरे दिल का, फिक्रे दवाम तेरा।